0: बच्चों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पेंट चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितड़ बहनूरे लाई आन गिया हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद जी।

कुछ गल्ला दस सकदा कुछ दस के भी समझ नहीं होनी कुछ तेरिया ने कुछ मेरिया ने तेरा मिलना तेरा विछड़ना तू कदे परछावे तो नेड़े तू कदे सब तो दूर तेरा हासा तेरा रोना ते कदे कदे एकदम चुप होना सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नू जीना सिखिया निक्कियां चीजां च खुश होना सिखिया उच्ची उच्ची हसना सिखिया दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया हां खुशी है मैनू तू जिंदगी किदां जीनी है ए दसिया पर अफसोस तेरे बिना किदां जीनी है किते ए नहीं दसिया गल हुण संगणी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है दुनिया जितन ते हारे हुए खेल तक है ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या विद माई फर्स्ट ईपी एडिक्शन।

0: आग से चले होते तो आज ना ही तुम हंसते और ना ही हम रोते।
1: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320.

तुम्हें मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

वफा तो बेकदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ए खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर जिंदगी खेल नहीं ये सिर्फ एक तमाशा है कितनों को जेल हुई जुर्म में इजाफा है हम आना के देर हुई इस कलम से वादा है।

ये खेल नहीं, ये सिर्फ एक तमाशा है, देखी दोपहर नहीं रातों का राजा मैं। हमारा ये देर हुई पर अपनों से वादा है, इस जंगल को शेर नहीं अंधेरा सिखाता है।

0: बच्चों को चूस कर गुठलिया फेंक दी है।
1: पेंट चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खानी कितड़ बहे नूरे लाई आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

ज्यादा ना सुना कर उनकी, तू ज्यादा ना सुना कर उनकी, बस अपने ही किया कर मन की, बस अपने ही किया कर मन की। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू।

अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: तेरे में हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ आई एम द पैरिस मदर
1: हार्ट।

मोहब्बत मेरा हम सफर है, केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर, है दिलचस्प बातें, है दिलकश ये मंजर।

सफर तू बता मुझको, चलना किधर है मुझको तलब खुद से मिलना किधर है, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया की जन्नत।

प्यार के लिए खुदा भी टाल देगा, जब होगी बात बेवफाई की, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।

गाली बस माही प्यार देगी मदद के लिए पुकार खुशियों के लिए गुहार देखी रिश्तों में दरार यारों से यार मार देखी मैंने बेचैन अपनी सांस मरने के लिए आज देगी एक मंजिल देगी फिर तलाश देगी सपनों के बिना जिंदा

0: voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

0: CJMR 1320.
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।